0: सारी।
1: छोड़ो मेरा हाथ।
0: मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा हाथ वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र

0: हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, एक गधे ने कोशिश की वो भी बन जाए घोड़ा, देखो ताल न टूटे हमारी चाल न टूटे, वो देखो ताल न टूटे हमारी चाल न टूटे,
1: देखो ये चाल न टूटे चाल न टूटे, डुम डुम डुम डुम।